ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय

पुटपर्ति पुरंदर नारायणा गोविंद गोविंद नारायणा गोविंद गोविंद